0: प्रति शोकसंवेदनाः प्रेषितवान्। सामाजिकसञ्चारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् कतरदेशस्य फादर अमीर इत्येतस्य स्थायी रिक्तं भारतकतरदेशयोः मध्ये सामरिकसहभागितां सुदृढां कर्तुम् अग्रेपि मार्गदर्शनं करिष्यति। असौ भारतस्य प्रति तस्य अतिस्नेहं कतरदेशे स्थितभारतीयसमुदायं प्रति तस्य आत्मीयभावं भारत कतर संबंधान सुदृढ़ी कर्तुम तस्य दृढ़ प्रतिबद्धतां च स्मृतवान्। जुलाई मासस्य 20 दिनांके आरभ्यमाणात् संसदः प्रावृत सत्रात् प्राक् भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य नेतृत्वयुता एनडीए इति संयुतिः अद्य सहयोगी दलानां वरिष्ठमन्त्रिभिः सह उपवेशनं करिष्यति। अस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः करिष्यति। अस्मिन् उपवेशने प्रावृत सत्राय एनडीए संयुतेः संसदीय कार्ययोजनायाः अन्तिमरूपं निर्धारयिष्यते, अपि च संयुतेः विधायी कार्यसूच्याः सहयोगिदलानां परस्पर समन्वयस्य अथ सदने विपक्षस्य प्रभावपूर्ण प्रतिपक्षाय एकीकृत कार्ययोजनायाः विषये विचार विमर्शः भविष्यति। राष्ट्रीय परीक्षा संस्थयास्य वर्षस्य नीट यूजी इत्यस्य पुनः परीक्षायाः परिणामाः उद्घोषिताः। स्नातकस्तरीय चिकित्सा दन्तचिकित्सा आयुष सहैव तत्सम्बद्ध पाठ्यक्रमेषु प्रवेशाय 11 लक्षाधिकाः अभ्यर्थिनः अर्हाः अभवन्। सर्वेषाम् अभ्यर्थिनाम् अङ्कपत्राणि तावत् आधिकारिक संकेतस्थले neet.nta.nic.in इत्यत्र उपलब्धानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्यारभ्य त्रिदिवसीय यात्रायै पश्चिम बंगाल राज्यं गमिष्यति। सूत्रानुसारं यात्रावधौ सः सीमा सुरक्षायाः प्रशासनस्य विधिव्यवस्थायाः विकासात्मक कार्यक्रमेषु भागं निर्वक्ष्यति। श्वः श्रीशाह सिलिगुड़ी क्षेत्रस्य जुमागाछिति सीम्नि गत्वा सीमा सुरक्षाबलस्य सैनिकैः साकं सम्भाषणमपि विधास्यति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां त्रि-एकदिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीय स्पर्धायां इंग्लैंड दलेन गतरात्रौ कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे भारतदलं चतुर्स्तोभैः पराजितम्। जो रूट उत्तम प्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठ क्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। अधुना उभे दले रविवासरे लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रिकेट इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे आयोज्यमाने अन्तिमायां निर्णायक श्रृंखलायां परस्परं स्पर्धिष्यतः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2,600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3,200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
1: जींद के बाद प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रूपये से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में

अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में एनडीए के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमा खाच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। खेलों में हॉकी इंडिया देश भर में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कल से राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग और ऑफिशिएटिंग एजुकेशन पाथवे कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इस पहल का उद्देश्य कोचों और तकनीकी अधिकारियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाना तथा देश में हॉकी शिक्षा को अधिक व्यवस्थित बनाना है। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को AFC Under-17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: उड़ाएरा लग्यो खुशी हुरीले, बगाएर लग्यो हाँसो भेलले, सहेर बसुके या त रोएर, बाँचु म कसरी तिमीलाई भुलेर। यो भावनात्मक गीत अब यहाँहरू समक्ष राखिरहेका छौँ उदय सोताङको स्वरमा। शब्द गणेश थापा मङ्गरको अनि सङ्गीत गायक कलाकार स्वयंको।

0: प्रस्तुति हो समसामयिक समीक्षा। अब केही क्षणमा यस केन्द्रबाट रिले गरी सुनाइरहेछौ आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको समाचार।
1: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
3: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक के

0: विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद एसएएस नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम तलवाड़ा मुकेरियां नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगंडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से करगिंडम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को एएफसी अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है, नीट यूजी का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के

0: आप लोग ऐसे बैंड चला रहे
1: तो एक बैंड का संचालन करने में कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितना प्रयास करना पड़ता है, इसका एक अनुभव एक बोल दीजिए आप लोग।
2: ये एक ही चीज है जो हम लोग सबको हंस दिए, यही बात है। मतलब ये आप जो प्रश्न पूछे है ये उत्तरी हंसी है, मतलब हम लोग कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं।
1: किसी भी बैंड चलाने या कोई भी काम करने से सबके लिए पैसे की जरूरत होता है।
2: हाँ,
1: क्योंकि आप लोग का बैंड जिस तरह से चल रहा है, बढ़ रहा है, विदाउट मनी और पैसे के बिना ये संभव नहीं होता है, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे तो ये किस तरह से इसको संभाल के चल रहे?
2: बॉन्डिंग्स, हम लोग का बॉन्डिंग्स बहुत अच्छा है। हम लोग का बॉन्डिंग्स बहुत अच्छा है, मतलब
3: ट्रूली म्यूजिकल पर्सन,
2: मतलब कनेक्शन हो जाता है, ऐसे ही हो गया, कनेक्शन हो गया, अभी कुछ करा नहीं जा सकता इसका। हम लोग ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही अच्छा लगता है, म्यूजिक करने में भी अच्छा लग रहा है, करते रहेंगे। और पैसे का जो बात आता है तो एडजस्ट कर लेते वो भी। कोई बात नहीं, म्यूजिक ही तो कर रहे हैं, म्यूजिक करने में मजा आना चाहिए बस।
1: सिर्फ म्यूजिक में, किसी भी काम करने में अगर हम लोग इंजॉय करके उसको आनंद लेके करेंगे तो अच्छा ही होगा,
2: अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा।
1: कोई भी काम अगर शुरू शुरू में तो सब चीज कठिन होता है, लेकिन जब रास्ता कठिन होता है तो ईश्वर भी रास्ता खुद बना देते हैं, तो रास्ता अपने आप बन जाता है।
2: आज का भी रास्ता वैसे ही बना, मतलब हम लोग आए थे सिलीगुड़ी में, तो सिलीगुड़ी में हम लोग कॉलेज में शो था, वो कॉलेज का शो किए, उसके बाद हम लोग करशंग में आ रहे थे घूमने के लिए सिर्फ। लेकिन मिडिल में सिलीगुड़ी में, सिलीगुड़ी का जो ऑल इंडिया रेडियो है वहाँ पे हम लोगों का एक प्रसारण हो गया, वो भी कनेक्शन आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, फिर से यहाँ पे कनेक्शन हो गया। ये जो कनेक्शन होता जा रहा है यही हम लोग को रास्ता हो जाएगा,
4: खुद ना खुद बनता जा रहा है।
1: आप लोग तो जैसे देश के विभिन्न एरिया में, विभिन्न भाग में कार्यक्रम प्रस्तुति दे रहे हैं, वो किस किस जगह में आपने इसका कार्यक्रम प्रस्तुत किया?
2: मुंबई, गुजरात, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, कोलकाता का वेस्ट बंगाल का सारा पार्ट, सब जगह पे हम लोग कर चुके हैं।
1: देश के विभिन्न भाग में जाके वो म्यूजिक से जुड़ने का प्रयास
2: ट्राई कर रहे हैं,
1: तो ये तो एक बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा चीज
2: हो सकता है।
1: क्योंकि अभी का जो माहौल है, अभी जो लोग के पास इतना स्ट्रेस है, टेंशन नहीं है, थोड़ा म्यूजिक से जोड़ के उसको कनेक्ट करके
2: कम किया जा सकता है,
1: उसका कुछ मनोरंजन दे रहे हैं ना, ये चीज बहुत बड़ा चीज है। तो इस बार हम लोग आप कौन सा लैंग्वेज में और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
3: एक राजस्थानी लैंग्वेज में
1: ठीक
3: गाना, राजस्थानी के साथ एक मराठी भी है।

0: Quiere. Quiere.
1: राजस्थानी गीत अनि मराठी दो मिक्स गरेकी आधुनिक श्रोता यहाँले अहिले जुन चाहिँ गीत प्रस्तुति गर्नुभयो त्यो राजस्थानीसँग मराठी पनि भाषाको एउटा मिक्स गरेर उहाँले त्यसलाई मिश्रण गरेर प्रस्तुति दिनुभयो। एउटा नौलो प्रस्तुति यो गीतको वास्तविक यो गीतको भाव कस्तो छ, यो गीतको वास्तविक रूप कस्तो छ त्यो हामीलाई थाहा छैन, तर यहाँहरूको जुन प्रस्तुतिमा हामीले सुन्यौँ यो गीत आजको समयमा धेरै फस्टिएर गइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। र आदरणीय श्रोता यहाँहरूलाई पुनः हामी स्वागत गर्छौँ, यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ अहिले हामी आकाशवाणी खरसाङको यो विशेष प्रस्तुति ब्यान्ड मेलोडिजमा छौँ र हामीले यहाँलाई थाहा छ विभिन्न ब्यान्डका ग्रुपहरूलाई यहाँ ल्याएर आकाशवाणी खरसाङमा उहाँहरूको प्रस्तुति अनि अन्तर्वार्ता लिने गरेका छौँ। आज पनि हामीसँग कलकत्ताको एउटा ब्यान्ड छ, विनी लाइभ एन्ड लाउड ब्यान्ड छ। यो ब्यान्डको यहाँहरूले विभिन्न भाषाहरूमा यहाँहरूले त्यहाँको क्षेत्रीय लोकगीतहरूलाई लिएर त्यसलाई आधुनिक रूपमा प्रस्तुति दिइरहेका छन्। साँच्चै हामीलाई लागिरहेको छ हाम्रा श्रोताहरूले यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ र यहाँहरूले मनोरञ्जन लिइरहनु भएको छ र यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ पक्का पनि हामीलाई यहाँहरूले अवश्य फिडब्याक दिनुहुनेछ। हामीलाई यहाँहरूले यहाँको सुझाव अनि सल्लाहको निम्ति आकाशवाणी खरसाङको ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोला। कार्यक्रम निर्देशक आकाशवाणी खरसाङ, हुलाक खरसाङ, जिल्ला दार्जिलिङ, पिनकोड 734203। पुनः हामी यहाँलाई स्वागत जनाउँछौँ र हामी बातचितको क्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। त आफ्नो जो इच्छा आएर अभि कार्यक्रम प्रस्तुति दिएर कैसे लग रहा है अभी?
2: बहुत अच्छा
1: लग रहा है। एक अनुभव आपको, आप लोग इतना जगह में इतना विभिन्न देश के विभिन्न भाग में कार्यक्रम करें, कोई ऐसा भी दिन होगा जो आपको कभी नहीं भूल सकते, जहाँ दुखा भी अनुभव होता है, सुखा होता है, सुख तो सभी का जीवन होता है, ऐसा होता है कि जो कहीं अपुग हो गया?
3: अभी तक ईश्वर की कृपा से नहीं है। अभी तक हम लोग जिस जगह पे जाते हैं कहीं पे प्रॉब्लम, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, कहीं पे ऑर्गेनाइजर लेट कर देते, तो हम लोग ऐसे ही है कि हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। हम लोग इंडियन लोग ये भूल गया है एडजस्ट करना। इंडियन लोग अभी खुद का होगा तो हो जाएगा, बस बाद बाकी का कोई नहीं सोचता। लेकिन हम लोग सबसे पहले ये समझना होगा, हम लोग जो इंसान है, हम लोग पहले सोशल जीव, मतलब सामाजिक जीव, पहले समाज आता है हम लोगों का, तो सबको लेके सोचना पड़ता है। सबका सेम नहीं जाता है, सबका टाइम सेम नहीं जाता, सबका प्रोसेस सेम नहीं जाता है, सबका टेक्निकलिटी सेम नहीं जाता है, लेकिन अगर सबको ये थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर ले तो एडजस्ट हो जाता है।
1: एक्चुअली जैसे आज हम लोग के यहाँ पर आज आप लोग का 6 लोग है, इसी तो आपके बैंक में कितना ग्रुप है, कितना लोग है?
2: यही है,
1: 6 ग्रुप ही है। सब जगह यहीं आप इधर जाते हैं। आप लोग ने देश की एक्चुअली किस तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे दूसरा जगह में जाके कैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज?
3: मेरी हम लोग का प्लग्ड होता है, मतलब टोटल इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ड्रम्स रहता है, फुल फ्लेजेड एक शो होता है जो कॉलेज फेस्ट होता है, रीजनल जो फेस्ट सब होता है, जो उत्सव होता है ना, बोलपुर उत्सव, आसनसोल उत्सव, फेस्टिवल्स में हम लोगों का ज्यादा नॉक आता है, ज्यादा बुलावा आता है, और कॉलेज फेस्ट जो होता है, कॉलेज का जो प्रोग्राम्स होता है उसमें हम लोग का ज्यादा,
2: मतलब वाइब्स मैच करते हैं,
3: और नॉक भी ज्यादा आता है।

0: तो इस बार अब हम दूसरा गाना सुनेंगे। तो आपको कौन सा लैंग्वेज में कौन गाना सुनना चाह रहे हैं?
1: हम लोग एक मलयालम, उसके साथ एक बॉलीवुड फोक।
0: बॉलीवुड फोक, आप लोग का एक यूनिक चीज हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि आप लोग दो डिफरेंट लैंग्वेज को मिक्स करके जो कर रहे हैं ना, और उसको भी फोक को लेके, ये बहुत बढ़िया चीज अभी हम लोग सुन रहे हैं। तो हम लोग तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा जितना भी श्रोता लोग है वो सुन रहे, वो भी गाना का एंजॉय कर रहे हैं।
1: थैंक यू।

0: बढ़िया,
1: थैंक यू,
0: मजा आयो और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। आपको जो प्रेजेंटेशन जो अभी प्रस्तुति दे रहे से बहुत अच्छा लगा। जैसे हम लोग म्यूजिक दे रहे जो यूथ, आप लोग सब यूथ है, युवा लोग है सब ना। अभी युवा देखते कि हम लोग का सब रॉक वेस्टर्न म्यूजिक में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि बैंड बोलने से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट में आ जाता है कि एक रॉक बैंड है जो वेस्टर्न म्यूजिक प्रेजेंट करता है, लेकिन आप लोग ने फोक म्यूजिक लेके उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी रॉक आपने क्यों छोड़ दिया?
2: आप लोग
3: रॉक है, रॉक है, रॉक
2: भी है,
1: रॉक भी है। उसको
2: ही फ्यूजन करके रखे। हम लोग रॉक का गाना भी करते हैं, रॉक गाना भी करते हैं,
0: हम इंग्लिश गाना भी करते
2: हैं। वैसा होता है।
4: नहीं आप, नहीं नहीं आप ऐसा सोचिए कि यही फोक म्यूजिक हो रहा है रॉक म्यूजिक में,
0: मत इसको रॉक टाइप में फ्यूजन करके प्रेजेंट करें।
2: इंस्ट्रूमेंट चेंज होता
0: है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, प्योरली आप रॉक में क्यों नहीं किए, जैसे वेस्टर्न म्यूजिक में क्यों नहीं?
2: रूट को छोड़ना नहीं चाहते। रूट का म्यूजिक बहुत अच्छा म्यूजिक होता है, ये सब भूलते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए।
4: देखिए रॉक म्यूजिक भी किसी का रूट म्यूजिक है।
0: आप लोग ने जो हम लोग का भारतीय, एक्चुअली भारतीय संगीत का जो रूट है जा रहा है उसको पकड़ के उसको रॉक में
2: हम लोग ढूंढ रहे हैं उस रूट
1: को। सुन मेरा तुम्हारा
0: उसी को प्रेजेंट कर रहे हैं। म्यूजिक इतना टफ है, इतना कंपटीशन है म्यूजिक में, सब कुमार शानू उदित नारायण श्रेया घोषाल ये बन सकता है कि नहीं?
1: वो स्ट्रगल करके ही कुमार शानू बना,
0: करके बना।
2: उनका पापा भी बोला होगा म्यूजिक में कुछ नहीं होगा,
1: आप जॉब कर लो,
2: आप जॉब कर लो।
0: अभी अभी आप लोग का माता पिता okay, आपको सपोर्ट कर रहे हैं?
2: थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं अभी। अभी जो एज में हम लोग आ चुके हैं, मतलब 10 साल पहले भी उतना सपोर्ट नहीं था, अभी हम लोग का पास थोड़ा बहुत सपोर्ट है कि, क्योंकि मम्मी पापा लोग देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे दूसरे लोगों के तरह, मतलब बोल रहे समाज में जाओ, जो जो हो रहा है अभी हम बोलने जाते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, तो बिजनेस करके वो करने से अच्छा है कि हम लोग म्यूजिक करके खुश रहे।
0: श्रोता यहाँले एउटा चीज यसो भनिरहनु भएको छ कि यहाँहरू यति युवा हुनुहुन्छ र यहाँले आफ्नो सन्तुष्टि, आफ्नो सन्तुष्टि कुनै पनि काम गर्दा सन्तुष्टि हुन्छ, आत्मसन्तुष्टिको निम्ति यहाँहरूले सङ्गीतलाई रोज्नु भएको छ, यहाँले घरबाट कुनै यहाँहरूलाई सहयोग नभए तापनि यहाँले जुन प्रकारले अगाडि बढिरहनुहुन्छ, वर्तमानमा विस्तारै रूपमा उहाँहरूको परिवारले पनि उहाँहरूलाई बुझेर सङ्गीतलाई यसरी अगाडि बढाइरहेका छन् र हामी फेरि यहाँसँग अरू विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। अहिलेलाई हामी एउटा गीत सुन्छ आफ्नो अनुसार ल्याङ्ग्वेज क्या सुना रहे
1: एक नेपाली
0: मिक्स
1: मिक्स गरेर

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर दो या तीन कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज भारत को अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलने का सपना साकार होने जा रहा है। चार हरित परिवहन और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के प्रति भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वे कोलकाता के लिए रवाना होंगे। गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके क्रियान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। इस नीति के अंतर्गत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्ष में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है। इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के कारोबार में 1% की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 695 अंक बढ़कर 77,882 जबकि निफ्टी 178 अंक की बढ़त के साथ 24,251 पर पहुंच गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध अप्रवासी ट्रक चालकों पर व्यापक कार्रवाई की योजना की घोषणा की है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य अमेरिका की सड़कों पर अवैध रूप से काम कर रहे लोगों को हटाकर उनकी जगह नए वाणिज्यिक लाइसेंसिंग कार्यक्रम के माध्यम से सैन्य क्षेत्र के लोगों को लाना है। ये घोषणा पेंसिल्वेनिया रक्षा तथा नवाचार शिखर सम्मेलन के दौरान की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताहरू, हामी आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट बोलिरहेका छौँ। अब आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट रेडियो सुनाइरहेछौँ हिन्दीमा समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जींद के एकलव स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तरकन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वे कोलकाता के लिए रवाना होंगे। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है। इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक हुर्मुस जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: to participate in the Royal Australian Air Force's premier multinational air combat exercise, Pitch Black 2026. The exercise will be held from the 20th of July to the 7th of August at Royal Australian Air Force bases in Darwin, Tyndall and Amberley in Northern Australia. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall today over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Odisha, parts of Bihar, Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Jharkhand, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura, Uttarakhand, Vidarbh, West Bengal and Sikkim are also expected to receive moderate to heavy rainfall during the day. A report.
1: The weather department also predicted thunderstorms and lightning today over Gangetic, West Bengal, Jammu and Kashmir, Ladakh, Muzaffarabad, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rayalaseema and Telangana. Similar weather conditions are also expected at places over parts of Northeast India, Andaman and Nicobar Islands, Bihar and Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. Meanwhile, heat wave conditions are likely to persist today over Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. The Met department said that Andhra Pradesh, Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal are expected to experience a hot and humid day today. With Priya, this is Anuja Kumar for Akashwani News, Delhi.
0: In badminton, two-time Olympic medalist PV Sindhu has advanced to the semi-finals of the Japan Open 2026. Sindhu progressed after Japan's former world champion Nozomi Okuhara withdrew from their women's singles quarterfinal, giving the Indian shuttler a walkover. World number 10 Sindhu will now face China's world number 4 Chen Yufei in the semi-finals tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi flags off India's first hydrogen train in Jind, Haryana, also lays foundation stone and dedicates various development projects worth over 14,000 crore rupees. DGMA directs ship owners to avoid deploying Indian seafarers undertaking voyages through Strait of Hormuz. European Union expresses serious concern over human rights situation in Pakistan, asks Islamabad to comply with international commitments to access trade benefits. IMD forecasts heavy rainfall over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Odisha today. And in badminton, Indian ace shuttler PV Sindhu enters semi-finals of Japan Open in Tokyo. With that, we end the midday news.
2: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath main Kanaklata. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान। और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।
3: दो नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में

0: मेडिकल कॉलेज और नारनौल में मर्सी च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
0: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी यह सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्र संकल्प का परिणाम है।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
1: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
3: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जींद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
4: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में

0: व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाज के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषयों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित GSP ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित ये प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 105.5 मेगाहर्ज न्यूज अनि आरएफ अनि दार्जिलिङको एफएम 110.2 मेगाहर्जमा यो प्रसारण हो आकाशवाणी खरसाङको श्रोताहरू अब प्रस्तुत छ हिन्दी वार्ता
1: नमस्कार श्रोताओ मैं आपकी संचालिका सुरक्षित तामंग की ओर से स्वागत है हमारे आज के हिंदी वार्ता में। श्रोताओ बाल शोषण एक गंभीर और दंडनीय अपराध है जो बच्चों के शारीरिक मानसिक और भावनात्मक विकास को पूरी तरह से नुकसान कर देता है। हर बच्चे को एक सुरक्षित भयमुक्त और प्यार भरा माहौल पाने का कानूनी और नैतिक अधिकार है। दोस्तों आज इसी विषय को लेकर आज हम वार्ता सुनेंगे। हमारे आज की वार्ता का विषय है बाल शोषण एक गंभीर और दंडनीय अपराध और इस वार्ता को प्रस्तुत कर रही है पूनम गुप्ता। तो आइए दोस्तों इस वार्ता को सुना जाए।
2: नमस्कार प्रिय श्रोतागणों मैं पूनम गुप्ता करशियोंग आकाशवाणी से आज आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका कि शीर्षक है बाल शोषण एक गंभीर एवं दंडनीय अपराध। बच्चे आज के नागरिक नहीं बल्कि कल के राष्ट्र निर्माता हैं। यह कथन केवल एक आदर्श वाक्य नहीं बल्कि किसी भी सभ्य समाज की मूल भावना है। किसी राष्ट्र का भविष्य उसके बच्चों की सुरक्षा शिक्षा स्वास्थ्य और समुचित विकास पर निर्भर करता है। जिस समाज में बच्चों को प्रेम सम्मान सुरक्षा और अवसर प्राप्त होते हैं वह समाज दीर्घकाल में समृद्ध संवेदनशील और प्रगतिशील बनता है। इसके विपरीत जहां बच्चे हिंसा उपेक्षा शोषण और भय के वातावरण में बड़े होते हैं वहां सामाजिक असमानता अपराध और मानवीय मूल्यों का ह्रास बढ़ता है। दुर्भाग्यवश आधुनिक युग में विज्ञान तकनीक और आर्थिक प्रगति के बावजूद बाल शोषण विश्व की सबसे गंभीर सामाजिक और मानवाधिकार संबंधी समस्याओं में से एक बना हुआ है। प्रतिदिन असंख्य बच्चे शारीरिक हिंसा मानसिक प्रताड़ना यौन उत्पीड़न बाल श्रम मानव तस्करी बाल विवाह ऑनलाइन शोषण और उपेक्षा जैसी अमानवीय परिस्थितियों का सामना करते हैं। इन अपराधों का प्रभाव केवल उनके

और मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसी अवधि में बच्चे का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और नैतिक विकास होता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों के अनुभव व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। यदि बचपन सुरक्षित, प्रेमपूर्ण और सकारात्मक वातावरण में बीतता है तो बच्चा आत्मविश्वासी, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनता है। इसके विपरीत यदि वह हिंसा, भय और शोषण का सामना करता है तो उसके व्यक्तित्व पर गहरे और दीर्घकालिक दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। इसी कारण बच्चों के संरक्षण को केवल पारिवारिक दायित्व नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व भी माना जाता है। आखिर बाल शोषण है क्या? देखिए, बाल शोषण से आशय किसी भी ऐसे कार्य, व्यवहार या उपेक्षा से है जिसके कारण बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक या नैतिक विकास को हानि पहुँचे। यह शोषण प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी। कई बार अपराध स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जैसे मारपीट या बाल श्रम, जबकि कई बार मानसिक उत्पीड़न, भावनात्मक उपेक्षा या ऑनलाइन शोषण लंबे समय तक छिपा रह जाता है। सामान्य धारणा यह है कि बाल शोषण केवल गरीब परिवारों में होता है, जबकि वास्तविकता यह है कि यह किसी भी वर्ग, समुदाय, धर्म, क्षेत्र या आर्थिक स्तर में भी हो सकता है। बाल शोषण अनेक रूपों में सामने आता है। इनमें से प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। एक, शारीरिक शोषण। जब किसी बच्चे को जानबूझकर शारीरिक चोट पहुंचाई जाती है, उसे पीटा जाता है, जलाया जाता है, धक्का दिया जाता है या फिर किसी भी प्रकार की हिंसा की जाती है तो यह शारीरिक शोषण कहलाता है। ऐसे बच्चे अक्सर भयभीत रहते हैं, चोटों को छिपाने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे आत्मविश्वास खो देते हैं। मानसिक शोषण कई बार शारीरिक हिंसा से भी अधिक खतरनाक होता है। बार बार अपमानित करना, गाली देना, डराना, धमकाना, लगातार तुलना करना, प्रेम और स्नेह से वंचित रखना या फिर बच्चे को यह महसूस कराना कि वह किसी भी काम का नहीं है, ये सभी मानसिक शोषण के उदाहरण हैं। ऐसे बच्चों में अवसाद, चिंता, हीन भावना और आत्मविश्वास की कमी विकसित हो सकती है। बाल यौन शोषण भी सबसे जघन्य अपराधों में से एक है। इसमें किसी भी प्रकार का अनुचित यौन व्यवहार, अश्लील स्पर्श, अश्लील बातचीत, अश्लील सामग्री दिखाना, बच्चे का अश्लील चित्र या वीडियो बनाना, ऑनलाइन यौन उत्पीड़न या अन्य यौन अपराध सम्मिलित हैं। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि अनेक मामलों में अपराधी कोई परिचित व्यक्ति ही होता है। एक इसका अन्य उपेक्षा। उपेक्षा भी बाल शोषण का गंभीर रूप है। यदि बच्चे को पर्याप्त भोजन, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, भावनात्मक सहयोग या आवश्यक देखभाल नहीं मिलती तो यह उसकी उपेक्षा मानी जाती है। इन्हीं कारणों में एक कारण है आर्थिक शोषण। जब बच्चों से मजदूरी कराई जाती है, भीख मंगवाई जाती है, घरेलू नौकर के रूप में कार्य कराया जाता है या उनकी आय का अनुचित लाभ उठाया जाता है तो यह आर्थिक शोषण है। ऐसे बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और उनका बचपन समय से पहले समाप्त हो जाता है। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन शोषण तेजी से बढ़ती हुई चुनौती है। अपराधी नकली पहचान बनाकर बच्चों से मित्रता करते हैं, उनका विश्वास जीतते हैं, निजी जानकारी प्राप्त करते हैं और बाद में उनका शोषण या ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं। इसलिए डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा आज बाल संरक्षण का अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। बाल शोषण किसी बच्चे की गरिमा, स्वतंत्रता और मूलभूत मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इससे बचपन नष्ट हो जाता है, शिक्षा प्रभावित होती है, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, परिवार का विश्वास टूटता है, समाज में अपराध और हिंसा बढ़ती है, साथ ही साथ राष्ट्र की मानवीय और आर्थिक प्रगति बाधित होती है। इसी कारण लगभग सभी देशों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बाल अधिकारों की

शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आज आवश्यकता केवल कठोर कानूनों की नहीं बल्कि ऐसी सामाजिक चेतना की है जहां हर बच्चा सुरक्षित महसूस करे, हर माता पिता जागरूक हो, हर शिक्षक संवेदनशील हो, हर नागरिक अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाए और हर संस्था बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता दे। जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति यह नहीं समझेगा कि हर बच्चा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, तब तक बाल शोषण जैसी समस्या का पूर्ण समाधान संभव नहीं होगा। आज लगभग सभी देश यह स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित बचपन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सम्मानजनक जीवन का अधिकार है। फिर भी दुनिया के अनेक हिस्सों में बच्चे गरीबी, युद्ध, विस्थापन, तस्करी, बाल विवाह, यौन शोषण और बाल श्रम जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं लगातार इस दिशा में कार्य कर रही हैं कि प्रत्येक बच्चा हिंसा और शोषण से मुक्त वातावरण में जीवन व्यतीत कर सके। कई देशों ने बाल संरक्षण के लिए विशेष न्यायालय, परामर्श सेवाएं, हेल्पलाइन और पुनर्वास कार्यक्रम विकसित किए हैं। इसके बावजूद इंटरनेट के बढ़ते उपयोग, संगठित अपराधों और मानव तस्करी ने नई चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं। इसलिए बाल संरक्षण की रणनीतियों को भी समय के साथ निरंतर अद्यतन करना आवश्यक है। भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। यहाँ करोड़ों बच्चे विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में रहते हैं। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल अधिकारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। फिर भी बाल शोषण की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार के शोषण के मामले आते हैं। इनमें शारीरिक हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, यौन अपराध, बाल श्रम, बाल विवाह, तस्करी और ऑनलाइन शोषण प्रमुख हैं। बाल शोषण किसी एक कारण से उत्पन्न नहीं होता, यह अनेक सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारकों का परिणाम है। उनमें से एक है गरीबी। गरीबी बाल शोषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। जब परिवार आर्थिक संकटों से जूझते हैं, तब कई बार बच्चों को विद्यालय भेजने की बजाय काम पर लगा दिया जाता है। कुछ मामलों में बच्चों को भीख मांगने, घरेलू काम करने या जोखिमपूर्ण उद्योगों में काम करने के लिए विवश किया जाता है। इसके साथ ही अशिक्षा भी इसका एक प्रमुख कारण है। अशिक्षा केवल बच्चों की नहीं बल्कि माता पिता की भी समस्या है। अनेक अभिभावक बच्चों के अधिकारों और संरक्षण संबंधी कानूनों से परिचित नहीं होते और घरेलू हिंसा भी इससे अछूती नहीं है। जिस परिवार में लगातार झगड़े, हिंसा, अपमान या तनाव का वातावरण रहता है, वहाँ बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं। वे स्वयं हिंसा के शिकार भी बन सकते हैं और मानसिक रूप से असुरक्षित भी हो जाते हैं। इन्हीं कारणों में एक कारण है नशाखोरी और मादक पदार्थों की लत व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। ऐसे वातावरण में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और हिंसा की संभावना बढ़ जाती है। कुछ सामाजिक क्रूरतियां जैसे कि बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव, दहेज बच्चों के अधिकारों को प्रभावित करती हैं। विशेष रूप से बालिकाएं कई बार शिक्षा से वंचित रह जाती हैं और कम आयु में विवाह के कारण शारीरिक तथा मानसिक कठिनाइयों का सामना करती हैं। इसके साथ ही जागरूकता का अभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण है। कई बच्चों को यह तक नहीं बताया जाता कि यदि कोई व्यक्ति उन्हें असहज महसूस कराए तो उन्हें क्या करना चाहिए। यदि बच्चों को सुरक्षा, आत्मरक्षा और सहायता मांगने के बारे में जानकारी ना हो तो वे अपराधियों के लिए आसान लक्ष्य बन सकते हैं। साथ ही इंटरनेट और सोशल मीडिया का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। डिजिटल तकनीक ने बच्चों को सीखने और संवाद के नए अवसर दिए हैं, परंतु इनके साथ नए खतरे भी उत्पन्न हुए हैं। ऑनलाइन गेम, सोशल मीडिया और चैटिंग प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके कुछ अपराधी बच्चों का विश्वास

जीतने, उन्हें बहकाने या ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं। यदि किसी बच्चे में अचानक कुछ परिवर्तन दिखाई दे तो उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए, जैसे कि अचानक अत्यधिक चुप या आक्रामक हो जाना, किसी विशेष व्यक्ति से मिलने से डरना, विद्यालय जाने से इनकार करना, पढ़ाई में गिरावट आना, बार बार चोट लगना, अचानक उदासी या चिंता, अकेले रहने की प्रवृत्ति, आत्मविश्वास की कमी और रात में डर कर जागना। इन संकेतों का अर्थ हमेशा शोषण नहीं होता, लेकिन ऐसे मामलों में संवेदनशीलता और सावधानी आवश्यक है। बाल शोषण केवल एक क्षणिक घटना नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव बच्चे के संपूर्ण जीवन पर पड़ सकता है। यह उसके शरीर, मन, व्यक्तित्व, शिक्षा, सामाजिक संबंधों तथा भविष्य को गहराई से प्रभावित करता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बचपन में प्राप्त आघात यदि समय रहते दूर ना किया जाए तो उसका प्रभाव व्यक्ति के वयस्क जीवन तक बना रह सकता है। इसलिए बाल शोषण को केवल एक कानूनी अपराध नहीं, बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक और मानवाधिकार संबंधी समस्या के रूप में भी देखा जाना चाहिए। बाल शोषण के शारीरिक दुष्प्रभाव भी होते हैं। शारीरिक शोषण का प्रभाव तुरंत दिखाई दे सकता है, परंतु कई बार इसके दूरगामी परिणाम भी होते हैं। इसके कारण बच्चे में चोट, फ्रैक्चर या जलने के घाव, कुपोषण, शारीरिक विकास में बाधा, बार बार बीमार पड़ना, स्थायी विकलांगता जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि समय पर उपचार ना मिले तो छोटी चोट भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का रूप ले सकती है। बाल शोषण का सबसे गहरा प्रभाव बच्चे के मन पर पड़ता है। ऐसे बच्चों में प्राय अनेक समस्याएं देखी जाती हैं, जैसे कि निरंतर भय और असुरक्षा, आत्मविश्वास में कमी, अवसाद, चिंता, दुःस्वप्न, अकेलापन, अपराध बोध, लोगों पर विश्वास करने में कठिनाई। कुछ बच्चे अत्यधिक शांत हो जाते हैं, जबकि कुछ का व्यवहार आक्रामक हो सकता है। कई बार वे अपनी भावनाएं व्यक्त ही नहीं कर पाते। बच्चे का भावनात्मक विकास उसके पारिवारिक वातावरण पर निर्भर करता है। यदि वही वातावरण हिंसा, अपमान या उपेक्षा से भरा हो तो बच्चा प्रेम और विश्वास की भावना खो सकता है, स्वयं को महत्वहीन समझने लगता है, दूसरों से दूरी बनाने लगता है, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है। ऐसी स्थिति में उसका आत्मसम्मान गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। बाल शोषण का सीधा प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है। ऐसे बच्चों में विद्यालय से अनुपस्थित रहना, पढ़ाई में रुचि कम होना, एकाग्रता में कमी, परीक्षा परिणाम खराब होना, विद्यालय छोड़ देना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शिक्षा से वंचित होने के कारण भविष्य में रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर भी सीमित हो जाते हैं। शोषण का शिकार बच्चा अक्सर समाज से दूरी बनाने लगता है। वह मित्र बनाने से बचता है, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लेता, लोगों पर आसानी से विश्वास नहीं करता और स्वयं को अलग थलग महसूस करता है। यदि बच्चा बाल श्रम या अन्य प्रकार के आर्थिक शोषण का शिकार होता है तो उसका बचपन छिन जाता है। ऐसे बच्चे शिक्षा पूरी नहीं कर पाते और कम आय वाले कार्य तक ही सीमित रह जाते हैं। इस प्रकार बाल शोषण का प्रभाव केवल व्यक्ति पर नहीं, बल्कि देश के अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। बाल शोषण के मामलों में केवल अपराधी को दंड देना पर्याप्त नहीं है, पीड़ित बच्चे का पुनर्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे यदि बच्चे को शारीरिक चोट पहुंची हो तो तुरंत उचित चिकित्सा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक और परामर्शदाता बच्चे को मानसिक आघात से उबरने में सहायता करते हैं। परामर्श का उद्देश्य बच्चे में आत्मविश्वास, सुरक्षा और सामान्य जीवन की भावना को पुनः स्थापित करना होता है। परिवार को भी चाहिए कि बच्चे की बात ध्यान से सुने, उसे दोषी ना ठहराए, उसका विश्वास बनाए रखे, उसे प्रेम और सुरक्षा का अनुभव कराए। परिवार का सकारात्मक सहयोग पुनर्वास का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। परिवार बाल संरक्षण की

पहली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। माता पिता को चाहिए कि बच्चों के साथ प्रतिदिन संवाद करें, उनकी भावनाओं को समझे, उन्हें बिना डरे अपनी बात कहने का अवसर दे, उनकी गतिविधियों पर संतुलित निगरानी रखे तथा इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के बारे में भी जानकारी दे। विद्यालय की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यालय भी केवल सुरक्षा का या शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि बच्चों की सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालयों को बाल सुरक्षा नीति लागू करनी चाहिए, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना चाहिए, शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करनी चाहिए, नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा और साइबर सुरक्षा की जानकारी देनी चाहिए। इसमें समाज की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि समाज जागरूक हो जाए तो बाल शोषण की अनेक घटनाएं रोकी जा सकती हैं। प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि बाल श्रम का विरोध करे, बाल विवाह की सूचना दे, किसी भी प्रकार के शोषण को अनदेखा न करे, पीड़ित परिवार की सहायता करे और बच्चों के अधिकारों के प्रति सम्मान का वातावरण बनाए। मीडिया भी समाज में जागरूकता फैलाने का प्रभावी माध्यम है। उसे बाल अधिकारों पर सकारात्मक कार्यक्रम प्रसारित करने चाहिए। पीड़ित बच्चों की पहचान गोपनीय रखनी चाहिए। जिम्मेदार और संवेदनशील पत्रकारिता को बढ़ावा देना चाहिए। कल्पना कीजिए कि एक विद्यालय में पढ़ने वाला 10 वर्षीय बच्चा अचानक पढ़ाई में कमजोर होने लगे, हमेशा डरा डरा रहे और किसी विशेष व्यक्ति से मिलने से इनकार करे। यदि शिक्षक और माता पिता इसे केवल शरारत या जिद समझकर अनदेखा कर दें, तो स्थिति गंभीर हो सकती है। इसके विपरीत यदि वे धैर्य पूर्वक बच्चे से बात करें, उसकी भावनाओं को समझें और आवश्यकता होने पर संबंधित अधिकारियों तथा विशेषज्ञों की सहायता लें, तो समय रहते बच्चे को सुरक्षा, न्याय और पुनर्वास मिल सकता है। यह उदाहरण बताता है कि जागरूकता और संवेदनशीलता किसी बच्चे का जीवन बचा सकती है। दुनिया के अधिकांश देशों ने यह स्वीकार किया है कि बच्चों की सुरक्षा वैश्विक जिम्मेदारी है। यूनाइटेड नेशंस ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। विशेष रूप से यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड ने बच्चों के जीवन, विकास, सुरक्षा और सहभागिता के अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सरकारों के साथ मिलकर बाल श्रम उन्मूलन, मानव तस्करी की रोकथाम, शिक्षा के प्रसार, पोषण सुधार, बाल संरक्षण तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य कर रही है। बाल शोषण के रोकथाम केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। सबसे प्रभावी उपाय है अपराध होने से पहले ही उसे रोकना। इसके लिए हमें परिवार को सशक्त बनाना पड़ेगा। बच्चों के साथ प्रतिदिन परिवार को संवाद करना चाहिए, उन्हें बिना डरे अपनी बात कहने का अवसर दें, उनकी मित्रों और गतिविधियों की संतुलित जानकारी रखें, अनुशासन के नाम पर हिंसा से बचें। इसी तरह प्रत्येक विद्यालय में बाल सुरक्षा समिति, शिकायत निवारण व्यवस्था, जागरूकता कार्यक्रम, शिक्षकों का प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। बाल शोषण के मामलों में कार्य करने वाले अधिकारियों को बाल मनोविज्ञान, संवेदनशील पूछताछ और पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। न्याय में अनावश्यक विलंब पीड़ित और उसके परिवार के लिए अतिरिक्त मानसिक पीड़ा का कारण बनता है, इसलिए ऐसे मामलों का शीघ्र और निष्पक्ष निस्तारण आवश्यक है। बाल शोषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अनेक नीतिगत सुझाव भी हो सकते हैं। प्रत्येक विद्यालय में नियमित बाल सुरक्षा प्रशिक्षण, अभिभावकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, साइबर सुरक्षा शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना, बाल संरक्षण संस्थाओं को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में परामर्श सेवाओं का विस्तार, पीड़ित बच्चों के पुनर्वास के लिए विशेष योजनाएं, कानूनों का कठोर और निष्पक्ष पालन, समाज में बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि उसे समझना चाहिए कि बाल शोषण केवल किसी दूसरे परिवार की समस्या नहीं है। यदि किसी बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है और समाज

0: मौन रहता है तो वह मौन भी कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा देता है। हमें अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, बाल श्रम को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बाल विवाह का विरोध करना चाहिए, पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों का सहयोग करना चाहिए, साथ ही साथ बच्चों के अधिकारों का सम्मान भी करना चाहिए। नेल्सन मंडेला ने कहा था, किसी समाज की आत्मा को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि देखा जाए वह अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यह कथन हमें याद दिलाता है कि बच्चों की सुरक्षा केवल कानूनी दायित्व नहीं बल्कि हमारी नैतिक पहचान का भी मापदंड है। बाल शोषण एक गंभीर अमानवीय और दंडनीय अपराध है जो केवल एक बच्चे के वर्तमान को ही नहीं बल्कि उसके भविष्य, उसके परिवार और पूरे समाज को प्रभावित करता है। यह बच्चों के मूल अधिकारों, उनकी गरिमा और उनके व्यक्तित्व पर सीधा आघात है। इसलिए इसका मुकाबला केवल कानून के माध्यम से नहीं बल्कि शिक्षा, जागरूकता, सामाजिक उत्तरदायित्व, संवेदनशीलता और सामूहिक प्रयासों से किया जा सकता है। अंत में हमें यह समझना होगा कि प्रत्येक बच्चा सम्मान, सुरक्षा, प्रेम और अवसर का अधिकारी है। यदि किसी बच्चे का बचपन भय, हिंसा और शोषण में बीतता है तो वह केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की क्षति है। जब परिवार विश्वास का वातावरण बनाएगा, विद्यालय सुरक्षा का केंद्र बनेगा, समाज अन्याय के विरुद्ध खड़ा होगा, मीडिया जिम्मेदारी निभाएगा और सरकार कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी, तब हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकेंगे जहां प्रत्येक बच्चा निडर होकर अपने सपनों को साकार कर सके। अंततः हमारा संकल्प होना चाहिए, ना कोई बच्चा शोषण शिकार बने, ना कोई अपराधी कानून से बच सके और ना कोई नागरिक अन्याय देखकर मौन रहे। सुरक्षित बचपन ही समृद्ध, संवेदनशील और सशक्त भारत की सबसे मजबूत आधारशिला है। धन्यवाद।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे एक वार्ता जिसका विषय था बाल शोषण एक गंभीर और दंडनीय अपराध, और इस वार्ता को प्रस्तुत कर रही थी पूनम गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ आपकी संचालिका सुरक्षिता मंग को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: श्रोताहरू, अबको केही क्षणमा नै आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट समप्रसारित गरेर सुनाइरहेछौँ हिन्दी समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी शुभारंभ किया। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम अभिम योजना के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और सेक्टर 46 के सरकारी कॉलेज में छात्रावास भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
2: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही है।
1: इससे पहले हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय को निर्देश दिया गया है कि अगले आदेश तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती ना की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। ये परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमले को देखते हुए जारी किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मुर्मू इन देशों की यात्रा पर जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय यात्रा और 3 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की रोमानिया की पहली राजकीय यात्रा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताहरू, अबको केही क्षणमा नै आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट सम प्रसारण गरी सुनाइरहेछौ समाचार।

0: सुन्नुहोस् समाचार।
1: यो आकाशवाणी खरसाङ हो। अब प्रादेशिक समाचार रोशनी छेत्रीबाट सुन्नुहोस्।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक प्रकार से
2: श्रोताहरू, अब प्रस्तुत छ आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट समप्रसारित गरी नेपाली समाचार, अनि त्यसपछि क्रमैले सुनाउनेछौँ आकाशवाणी खरसाङ कलकत्ताबाट समप्रसारित गरी बङ्गला समाचार।

0: विपरीत दिशाबाट आइरहेको रेलको ठक्करमा परेको बताइएको छ। दुर्घटनामा अन्य चारजना विद्यार्थी र सवारी चालक पनि गम्भीर घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई बहरामपुर स्थित मुर्शिदाबाद मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा उपचारको लागि भर्ना गरिएको छ। आकाशवाणीबाट समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। भारतको समुद्री प्रशासन महानिर्देशनालयले अर्को सूचना जारी नभएसम्म हर्मुज जल डमरू मध्ये हुँदै आवत जावत गर्ने जहाजहरूमा भारतीय नाविकहरूलाई खटाउन नहुने निर्देशन दिएको छ। खाड़ी क्षेत्रमा बिग्रन्दै गएको सुरक्षा अवस्था तथा हालका दिनहरूमा व्यापारिक जहाजहरूमाथि भएका आक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै यो परामर्श जारी गरिएको डीजीएमएले जनाएको छ। यस सम्बन्धमा जहाज मालिक, जहाज व्यवस्थापक तथा भर्ती एवं नियुक्ति सेवा इजाजत पत्र प्राप्त कम्पनीहरूका लागि नयाँ परामर्श जारी गरिएको हो। यस्ता घटनाले द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत नाविक तथा व्यावसायिक जहाजहरूको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा बढ़ाएको पनि जनाएको छ। महानिर्देशनालयले भारतीय नाविकहरूको सुरक्षा र कल्याण तथा भारतीय जहाजहरूको सुरक्षा आफ्नो सर्वोच्च प्राथमिकता रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ। भारतकी वित्त मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लक्ष्य हरेक गाउँ र प्रत्येक योग्य नागरिकसम्म ब्याङ्किङ सेवा पुर्याउनु रहेको बताउनु भएको छ। आन्ध्र प्रदेशको पलनाडु जिल्लाको नरसारौपेटामा आज आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रममा उहाँले विभिन्न केन्द्रीय सरकारी योजना अन्तर्गत लाभार्थीलाई 3,216 करोड़ रूपियाँ बराबरको ऋण वितरण गर्नुभयो। वितरण गरिएको ऋण मध्ये कृषि क्षेत्रका लागि 2,363 करोड़ रूपियाँ, सूक्ष्म साना तथा मझौला उद्यम अर्थात एमएसएमई का लागि 325 करोड़ रूपियाँ तथा आवास, शिक्षा, सवारी साधन र सौर्य ऊर्जा सम्बन्धी ऋणका लागि 624 करोड़ रूपियाँ रहेको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै वित्त मन्त्री सीतारमणले सन् 2014 नै प्रधानमन्त्री मोदीले किसान, कृषि तथा हतकर्घा श्रमिक लगायत विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न नागरिकलाई संस्थागत ब्याङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित हरेक गाउँसम्म ब्याङ्किङ पहुँच विस्तार गर्ने अभियान अघि बढाएको बताउनुभयो। भारतको राष्ट्रिय परीक्षा एजेन्सी एनटीएले नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षाको परिणाम सार्वजनिक गरेको छ। परिणाम अनुसार 11 लाख भन्दा बढी परीक्षार्थी मेडिकल, दन्त चिकित्सा, आयुष तथा अन्य सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रमका लागि योग्य भएका छन्। एनटीए अनुसार सबै उम्मेद्वारले आफ्नो प्राप्त अंक आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्न सक्नेछन्। साथै भर्ना प्रक्रिया र काउन्सिलिङ कार्यक्रम समयमै सञ्चालन गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले परिणाम समयमै सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ। यस वर्ष भारतका 551 शहर तथा विदेशका 14 शहरमा रहेका 5,440 परीक्षा केन्द्रमा करिब 20 लाख परीक्षार्थीले पुनर्परीक्षामा सहभागिता जनाएका थिए। संसदको आगामी मनसून अधिवेशन अघि केन्द्र सरकारले यही आइतबार संसदमा सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ। संसदको मनसून अधिवेशन यही महिनाको 20 तारीकदेखि शुरू भई अर्को महिनाको 13 तारीकसम्म सञ्चालन हुनेछ। अधिवेशनका क्रममा विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ। जापान ओपन ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा दुईपटकी ओलम्पिक पदक विजेता पीवी सिन्धु सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेकी छन्। महिला एकलको क्वार्टर फाइनलमा जापानकी पूर्व विश्व च्याम्पियन नोजोमी ओकुहाराले खेलबाट नाम फिर्ता लिएपछि सिन्धुले वाक ओभर मार्फत अन्तिम चारमा स्थान बनाउनु भएको हो। अब सिन्धुले भोलि हुने सेमी फाइनलमा चीनकी विश्व नम्बर 4 चेन युफेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा चण्डीगढमा 4,700 करोड़ रूपियाँ भन्दा बढ़ीका विकास परियोजनाको शुभारम्भ। भारतको पहिलो हाइड्रोजन रेल सेवा सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा शुभारम्भ। आकाशवाणीबाट सुन्दै हुनुहुन्थ्यो समाचार पूरा भयो।
1: मृतदेर परिवार पिछु 10 लाख টাকা করে আর্থিক সহায়তার ঘোষণা রেলের। সরকার জানিয়েছে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মাধ্যমে সারা দেশে 1,90,000 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের ক্যাশলেস বা নগদবিহীন চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে। কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংস্থা ইপিএফও ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশ্বাস 2026 কর্মসূচি চালু করেছে। সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রাক্কালে আজ নতুন দিল্লিতে মন্ত্রীগোষ্ঠীর একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পিভি সিন্ধু জাপান ওপেন ব্যাডমিন্টনের সেমিফাইনালে উঠেছেন। আসছি বিস্তারিত খবরে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চণ্ডীগড়ে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সড়ক পরিকাঠামো ক্ষেত্রে 4,700 কোটি টাকার একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। চণ্ডীগড়ে পাঞ্জাব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী 505 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত উন্নত মা ও শিশু সুরক্ষা কেন্দ্র জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ফলে চণ্ডীগড়ের মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন হলেও এ সুফল শহরের গণ্ডি ছাড়িয়ে হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এর আগে প্রধানমন্ত্রী হরিয়ানার জিন্দ স্টেশন থেকে শনিপথের মধ্যে চলাচলকারী ভারতের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেনের যাত্রা সূচনা করেছেন। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে পরিবেশ বান্ধব এই ট্রেনটি তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে ভারত, জার্মানি, জাপান, চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলির সঙ্গে হাইড্রোজেন চালিত ট্রেন ব্যবহারকারী দেশগুলির সঙ্গে একই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হল। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের প্রথম হাইড্রোজেন চালিত ট্রেনের স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে। স্বয়ম্ভর ভারত এবং সুস্থিত উন্নয়নের ক্ষেত্রে আজকের দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে বলেও প্রধানমন্ত্রী জানান।
2: ভবিষ্যৎ মে জব ভী

0: पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें एसएएस नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
1: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहाँ लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
0: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
2: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
1: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही है।
0: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
1: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक RSS 800 सेवा, एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि RSS ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों

0: और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन के खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh. Flags off India's first hydrogen-powered train from Jind. Prime Minister says centre is committed to ease of living and new opportunities for every citizen with the spirit of Nagrik Deva Bhava. Government convenes all-party meeting on Sunday ahead of monsoon session of Parliament. President Draupadi Murmu to embark on 3-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania from Sunday. Niti Aayog releases Investment Friendliness Index 2026. Gujarat emerges as the top performer, followed by Maharashtra and Tamil Nadu. Legendary West Indian cricketer Gary Sobers passes away. An Indian team announced for FIH Women's Hockey World Cup to be held in Belgium and Netherlands next month. Salima Tete named the captain. Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh today. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar this evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. Inaugurated

0: जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना। और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: The Prime Minister said these railway stations are equipped with all the modern facilities. He said the transformation of these stations is part of one of the world's largest station redevelopment programs, Amrit Bharat Station Scheme.
0: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
1: Prime Minister also flagged off Sant Ravidas Express train from Jalandhar Cant Railway Station. Union Minister of Railways and Information and Broadcasting, Ashwini Vaishnav, and other dignitaries were also present on the occasion. Prime Minister Modi also inaugurated national highway projects, including a four-lane greenfield, Delhi-Amritsar-Katra Expressway, and laid the foundation stone for the development of six-lane greenfield, Southern Ludhiana Bypass. Earlier today, the Prime Minister flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at the Jind railway station in Haryana. The launch marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. Prime Minister also laid the foundation stone and dedicated several development projects to the nation worth over 14,000 crore rupees, including national highway projects in Haryana. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said, Indian Railways has undergone a major transformation over the past 12 years and described the hydrogen train as a historic milestone that has given Jind a special place in India's history.

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छाया गीत में। मैं हूँ विधि प्रवीण जैन। हर एक ख्वाब में बसती है तेरी नजर, मेरे हर ख्याल को छूती है तेरी नजर। दिल भी अजीब है मानता ही नहीं, कितनी बार समझाया फिर ढूंढे तेरी नजर। वो लफ्ज क्या कहें जो जुबां तक ना आए, सब राज बयां करती है तेरी नजर। मैं खो गई हूँ जैसे किसी गहरे समंदर में, जब से मुझ पर ठहरी है तेरी नजर।

वो चेहरा मानो प्रकृति की सबसे कोमल और रमणीय रचना हो, जहां हर रेखा में सौंदर्य की मधुर छाया बसी हुई है। कपोलों पर झलकती हल्की लाली संध्या की अंतिम आभा से प्रतीत होती है, और उसकी गहरी भावपूर्ण आंखें किसी अनंत कथा का मौन आमंत्रण देती हुई मन को बांध लेती हैं। अधरों पर सजी मृदुल मुस्कान ऐसे खिलती है जैसे किसी नव प्रभात में कली पहली बार मुस्कुराई हो, जिसमें ना कोई आडंबर है ना बनावट, केवल निष्कलुष आकर्षण। उसके चेहरे का एक समग्र सौंदर्य किसी एक अंग में नहीं, बल्कि उस अद्भुत समन्वय में है, जहां प्रत्येक भाव और प्रत्येक आभा मिलकर एक ऐसी मोहक छवि रचते हैं जो केवल देखी नहीं बल्कि गहराई से अनुभूति की जाती है।

बंद पलकों से तुझे पढ़ लेना हुनर हो जैसे, बिन नजर के भी तेरा मिलना असर हो जैसे, तेरी आहट ही मेरे दिल में उतर जाती है, हुई खामोश दुआ रूह का सफर हो जैसे। यूं तो आंखों की जरूरत ही नहीं पड़ती, रूह से रूह का मिलना ही नजर हो जैसे।

0: पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छाया गीत में। तेरी नजर से ही पहली वो मुलाकात हुई, दिल को खामोश दी एक मीठी सी बात हुई, एक पल ठहरी जो आंखें हैं तेरी आंखों पे, जिंदगी जैसे वहीं से नई शुरुआत हुई। हम तो वाकिफ भी ना थे इस अजब एहसास से, एक नजर क्या मिली रूह में बरसात हुई, तेरी पलकों की झपक में कोई जादू था, हर खुशी जैसे मेरे नाम की सौगात हुई। कभी किसी की नज़र शरारत से मुस्कुराती है तो लगता है जैसे उसमें कोई राज छुपा हो, एक ऐसा राज जिसे कहना तो वो चाहते हैं मगर कह नहीं पाते, और कभी वही नज़र इतनी गहरी हो जाती है कि उसमें डूब जाने का मन करता है बिना ये सोचे कि लौट पाएंगे या नहीं।
1: नजरों से कह दो जी

मोहब्बत अगर लफ्जों में बयां होती तो शायद इतनी खूबसूरत होती नहीं। असल जादू तो बस इसी में है कि उनकी नजर चुपचाप उनके दिल को छू लेती है, बिना आवाज, बिना इजाजत, और फिर सब कुछ अपना सा महसूस होता है। अगर वही नजर खफा हो जाए तो जज्बात दम तोड़ देते हैं।

दिल की नजर से तेरा ही नूर दिखता है, हर एक ख्वाब में बस तेरा सुरूर दिखता है, तेरी खामोशी भी जैसे कोई गजल कहे, हर लफ्ज में छुपा हुआ एक गुरूर दिखता है। जब से तेरी चाहत ने छुआ है रूह को, हर दर्द में अब एक सुकून दिखता है, तेरी आंखों की गहराई में डूब कर देखा, वहीं कहीं मेरा मुकद्दर लिखता है। अब दिल की नजर को और कुछ भाता नहीं, हर तरफ बस तेरा ही हुजूर दिखता है।

नजर, निगाहें, आंखें बस जज्बात बयां करती हैं और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जोड़ देती हैं। निगाहें वो कह देती हैं जो जुबान नहीं कह पाती, और निगाहें निगाहों की बातों को कह देती हैं। आज के कार्यक्रम छाया गीत में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।